गुरु स्वारियों जी, असीसा बख्शो, प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दिया विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सके। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगला की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उही लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया, इस सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उस जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उस जबान दे मिठियां कोल हारन लग पए। खुशामद है ही इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी, होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह दे इहो जिहे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग, ओह मैं तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया वां। एक दूजे तो एक दूजे दीआं मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाणा, इह उहनां ने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जदों इस तरह दे हालात बन गए ते इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करां, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है, दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है, वह लोग सन जिहड़े वह नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पए, शराबां पीण लग पए, जिहड़ी सिक्खी दे विच कदाचित भी कबूल नहीं है उन्हां औगणां नूं उन्होंने धारण कर लिया, बर्बादी दे राह तुर पए। छोटी जी बेनती विच होर कर दिया, अहमद शाह अब्दाली की गल आप कई बार विचार चुके। 23 अक्तूबर 1772 नूं उमर गया। तैमूर शाह उस 1793 तक जीवदा रहा है, पर उन्हें बहुतियां लड़ाइया सिखां नाल नहीं लड़िया। वह एक गल कहिंदा सी, मेरे बापू ने लड़ के की खट लिया। पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान, यह तैमूर शाह का छोटा पुत है, इहने पन विच भावना बनाई। इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इहने कुछ एक हमले किते, जदों इह तख्त ते बैठिया तेने हमले किते, 1795 विच हमला किया, 1796 विच हमला किया, 1798 विच हमला किया, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। इसे नूं इह सम्मन बुरज दे विच बैठे नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मंगारिया सी। इह उह जो तैमूर शाह दा पुत्तर। हुण इह भी जिहड़ा सी उह किनारा कर गया। मुड़ के इहनां दे झगड़े आपस विच शुरू हो गए।
ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1793 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ 1799 ਚ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਾ

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया. सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने. दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया. अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी. मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला. इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का. जाबर खां पठान है. महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया. शाम दो घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने. सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे. रात नूं जाके घेरा पा लिया. गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा, होर किसे नूं तंग नहीं करना. महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्ह लियांदा रस्सियां नाल. उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लेके आए है. आके महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच. आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं. प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहेब जी. क्यों पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए.
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है. मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है, मैं जो मर्जी करा. इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है. अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया.
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो.
1: क्योंकि हो सकता है कवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया. हो सकता वो इलाके दे च बदनाम होवे. जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है. सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया.
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो.
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालियां नूं इकट्ठा करके. सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लैके जा रहे, इहने आ कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमें

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहलां मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: सच्चे पातशाह यह महाराज तुहाडा ही पंथ है। हुण पंथ की कटिया हो रही है, भाव कट वड हो रही है, पंथ हुण हार रहा है। पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी। यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदे गुरु साहब की, जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन।
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए।
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सब तो, क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे, क्यों नहीं साडी मदद करदे।
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे।
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना, जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने।
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए।
0: तो इत्यादक सारे

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज ने निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए।

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है। ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लहे धरने?
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्हां ने?
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इना दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किम?
0: ए बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है, ए हजार बंदा किवें कर सकदा है? मैं तो ये पुछदा वे इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकदा है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरते वरतारा जग जथा?
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल। वो सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा, जंग जितेगा, अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल?
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार?
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो कह लैंदे खारी तो खखा खा, री छड़ देना खा, लक्ष्मी तो लल्ला खाल, ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ

0: प्रेमी जनों उस प्रकार मैं तुहानू सुनाई तुसी सुन लई।
1: दोहरा रामदास कुल राम कोर गुर उपती कह चुप।
0: रामदास धन गुरु रामदास जी कुल विचों बाबा गुरबख्श सिंह राम कोर जी कहंदे ए पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: इउं कहंदे समाधि ला लई गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन हो के गुप्त रस लिता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा ये साखी नु सुने कलयुगों दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे भगती ओदे हिरदे जागेगी तन गुरसिखा दी आस पूरी होवेगी जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई अमर छको दाड़ियां जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन किया कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो अमर छको गुरु वाले बनो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू मनो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारिया चीजा तो विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नू शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज एक कह देण भी उह वाहिगुरु करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी उह वाहिगुरु करन लग जाणगे भाई किहने कहा महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए ये कहण दा की फायदा फिर की बनेगा गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों इसे करके विस्तार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो सारियां गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते फिर भी कहिंदे आह गल क्यों आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इको ही बचन मान लो उसे विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन

0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाए।
0: यह सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है।
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए।
0: एक कौम है एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धूआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा। बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धूआं सारी दुनिया पींदी है।
1: पूछे परम सुप्रेम कर रहनी को बिरतंत।
0: हुण रहनी पुछदे ने सारे जाने कि परम प्रेम दे नाल पुछदे ने कि जिहड़ी खालसे दी रहनी बहनी है ये कैसी होनी चाहिदी है।
1: किसको देवे किमर है कैसे वरतै संत।
0: ए संत स्वरूप खालसा संत सिपाही खालसा ये हुण साडा है कि ग्रिस्तियां दा अगे तां किसे नूं होर दान दिंदे सी पर आप जी ने कहा दान दियो इन ही को भलो और नाले हुण होरनां नूं दान बंद कर दिता आपने। हुण ये भी दसो कि दान किनूं दईए किवें रहीए वरतारे विच रहत मर्यादा अपनी रहनी बहनी विच किवें रहीए ते इहदे नाल नाल कैसे वरतों संत किस तरीके नाल वरतना करिए संत खालसा नाल।
1: गुरु कै सुन खालसा केस पाहुली मुकत।
0: महाराज जी ने वचन किया सुनो खालसा जी जेड़ा केस रखे हुए ने खंडे बाटे दा अमर छक के ककारां दी मर्यादा नितनेमी प्रेमी है ये तां पक्का ही मुक्त है जेड़ा कुरेतां तो बचिया होवे।
1: खंडे की सब ते भले कै चरणन की।
0: खंडे दी हुण असीं पहल बख्शिश कीती है जां पहलां चरण पहल बख्शिश कीती सी खालसे नूं सो इस करके सारे नालों श्रोमणी खंडे बाटे दा अमृत है।
1: युग युग में हम अवतर है अपने भगतन काज।
0: युगां युगां दे विच असीं अवतार भेजदे आं जां आप आउंदे आं अवतारां नूं भी भेजदे ने हुक्म करके क्योंकि बाहर नहीं है कोई महाराज जी तों। इस करके महाराज कहिंदे जदों जदों दुनिया दे उत्ते भीड़ा बणदी है जिन्नी कि समर्था की लोड़ है नित अवतार नमित अवतार फिर अंसा अवतार अवेशा अवतार एक कला अवतार पूर्ण अवतार छे तरह के अवतार भेजते हैं। जदों देखिया कि हुण किसी तो कम नहीं बनता फिर असी खुद आप चल के सृष्टि उत्ते आउंदे हां।
1: रहनी रह तो खालसा सो मेरो सिर ताज।
0: जेड़ा रहनी दे विच रहिंदा वो मेरा खालसा है ए नहीं कि सारे अपने आप नूं खालसा लिखी जान जां समझी जान खालसा रहत मर्यादा वाला ही खालसा है वो मेरा सिर ताज है वो मेरे सिर ताज गुरसिख जिन्हां दे महाराज कहिंदे मैं दर्शन करके खुश हुंदा हां जो मर्यादा दे विच परपक हन।
1: तरै केस पाहुल बिना तरै केस पाहुल बिना पेखी मूरख सिख।
0: आवे कि अमृत जरूर छको क्योंकि अमृत छकिया रहत दा धारनी हुंदा है एवें रहत कोई नहीं रखदा क्योंकि रहत बिना जीवन पलटा नहीं खांदा इसलिए केस अमृत ते रहत जिहड़ी है ये आपस विच बहुत जरूरी है। जे हुण कोई बंदा धरे केस अमृत छके तो बिना उहनू की कहिंदे भेखी है उह मूर्ख सिख कहिंदे केस दिखा के ये दाढ़ी रख के ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ।
1: ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਸਿੱਖ,
0: ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਭਿੱਖ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਚ ਉਕਾਈ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਭਿੱਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
1: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਤੂਏ,
0: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ।
1: ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਕੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੋਏ,
0: ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਭਰਮੇਗਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

0: जिहड़े पांडे ने तीर्थां दे उत्ते जाके फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं उत्ते तीर्थां ते जाके दान देना है तो महाराज सच्चे पातशाह कहते इन्हां नूं भी दान नहीं देना पांड्या नूं इतिहादक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उत्ते जां होर ना स्थानां ते कहने महाराज सरबंस दान करो महाराज की पालकी भी लै ली होर सारा कुछ ही लै लिया महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारयां नूं हुण मना कर दिता है किते नहीं जाना होर ना किते उत्थे दान देना ना होर थां ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्या नूं दान देना कहने गुरु घर दे विच ही देना जो देना इस करके ये गल पक्की कर लो
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर मम विचार सो नित भरपूर
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार इन्हां दे विचार करे एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल
1: सिख पुगावै मेरा सिख केस पेस ने मेरो ब्रिख
0: इस करके सिख पुगावै मेरा सिख मेरा जेड़ा सिख है ना वो सिख नूं ही छकावे भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे इस प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने वो मेरो ब्रिख बिख तो भाव जहर रूप जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है वह तो जहर रूप है उन्हें खवाना ते खाना
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग सो सकेस हुंदा सहत केसां दे जां केसां तो बिना मेरा होवे निसंग निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे
1: बामण सोई ब्यास सम दीवै दान उमंग
0: सो ओ जिहड़ा है ना केसा तो बिना वो जे केसा वाला बन जावे गुरु घर दा सिख बन जावे वो तो फिर ब्यास वर्गा बन गया ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे हां ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए होर सारा कुछ छड़ के
1: कन्या देवै सिख को लेवै नै कुछ दाम
0: सिख नूं कन्या देवे पर दमड़े ना लवे बेचना आदक दी क्रिया करनी फिर इसे प्रकार आ दाज दहेज आदक तो सतगुरु ने मना ही कीता है
1: सोई मेरा सिख है पहुंचे लै मम धाम
0: ओही मेरा सिख है ओ लै के मेरे धाम अपड़ेगा भाव मेरे सचखंड घर दे विच आवेगा ओ की लै के आवेगा जी कहिंदे पुन्न ओ पुन्न कट्ठे करेगा जेड़ा बंदा चंगे कर्म करेगा साडे दसे राह ते चलेगा
1: सरवर गुग्गा पीर जे जोगी भूत ना सेव
0: एक सुल्तानीए पीर सरवर ने जेड़े एक गुग्गा पीर जेड़ा है एक जोगी जेड़े ने एक भूत इन्हां दी सेवा नहीं करनी ऐवें कितें जाके उत्थे मत्थे टेक लो थां थां दे इह बड़ियां तुच्छ जिहियां चीजां ने जिन्नियां गिणियां ने इन्ने ओह नहीं है कि जिन्हें गुरु साहब दे बराबर कित्थे चले जाणगे इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े पूर्ण भाई सिंह ने ना गुरु दे उन्हां दे ते इह सारियां चीजां दास ने सेवादार ने हथ जोड़ के उन्हां कोल खड़दे ने आके भी जे सिंह हो के उधर नूं तुरिया जावे महाराज कहिंदे ओह भी साडा फिर सिंह

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लैके मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना किहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल, दसना करिए पवित्र गज के।

0: सुपती निस मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: कहते पुत्र एक गल का ख्याल रखी बाला ना सिर चढ़ जी कि मैं ही मेरा राज है। जिन्ना ने ब्रह्म दे आसरे हो के तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। जिन्ना ने यह कर्म पकड़ लिया ना जेड़े गुरु वाले होणगे जेड़े सही गुरसिख होणगे जेड़े धर्मात्मा पुरश होणगे उत्थे भुल के ना हथ पाली किते ओह तैनू कर देणगे पुठा। उही बचन आ गया ना बाबा जी वाला कह रहे इस करके उन्हां तो डरी उन्हां दे जोड़े जाड़े झाड़ाया करी प्रसाद भी लै लिया कर जाके इस करके उत्थों थोड़ा जा भै करी। ते बाकी जेड़े लोग ने कलयुग दे अंदर पखंडी लोग शराबी कबाबी एह जे पुठे कम्मा वाले इन्हां नूं जिन्ना मर्जी मारी मैं तैनू कुछ नहीं कहिंदा।
1: अपर सकल तज आसरो एक नाम को प्रेम
0: कहिंदे होर सारा आसरा छड्ड देना कलयुग दे विच

0: संतोख सच दी विचार या सच दा वर्तते खाने जो की है ते ना खाने जो की है एदा विचार जो धारेगा अपने मन दे अंदर कलयुग विच
1: सोई संत गुर मानियो कलो पुत्र सत चित
0: कलयुग पुत्र कलयुग दे विच ओ बंदे नूं तू चंगा मन्नी जेड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओ तो डरी क्योंकि वह बंदा बड़ा चंगा है जेड़ा सच दी विचार करेगा की खाना ते की नहीं खाना ओ बंदा भी चंगा ओदे कोल ना ज्यादा जाई तंग ना करी ओनू अपनी नारी विच सती बरता होवे ते अखाज दे खान विच बिरती विच बरागवान होवे ते चित विच सच करके धार लै गल ऐसे पुरशां नू कदे तंग ना करी
1: सतजुग मेरे सिर बसो भुजा बसो तित्रे
0: कहने सतजुग तां मेरे सिर ते बसदा है कहण लग्या ब्रह्मा बावां विच मेरे त्रेता वसदा है
1: द्वापर बसियो जंग मम तू चरणन को से
0: जेड़ा द्वापर है जुग ब्रह्मा कहंदा ए मेरियां जंगां विच वसदा है अते जेड़ा कलयुग है ए मेरे पैरां विच वसदा है
1: अंग अंग की मुक्त ए वेद मांझ लिख देन
0: कहंदे इस तरीके दे नाल जेड़ा ना वेद विच ए गल लिख दिती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है कलयुग विच किवें मुक्ति होनी है सतयुग विच किवें होनी है त्रेते विच किवें द्वापर विच किवें सारिया युगां दा आपो अपना धर्म है सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों देणे कल केवल नाम आधार कलयुग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओहो पिछे कही गल सच्ची है ओ गल भली है सारी दा संभाला तुहानू करा दिता है पा अथवा तुसां समूला कर लिया याद कर लिया मैं तुहानू दस दिता कि मेरे समय विच की वर्तारा वरतेगा
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो ममताम
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पा तक एक कल्प जेड़ा हुंदा है एक कलम जैसा हुंदा कि दसक युग जदों लंघ जांदे ने इस तरीके नाल अपनी करमी करके करमी आपो अपनी करके फिर मेरे कोलों सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने ये वाक ब्रह्म संहिता विच कहे हुए इन्हां ने लए ने कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल चार वेद ये सारियां चीजां जिहड़ियां ने ये सुनाईयां कलयुग ने आके महाराज नूं
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहंदे अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने परा बाणी पसंती बाणी ए सारियां बाणियां दे जाप
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप
0: फिर जेड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है फिर इस प्रकार बैखरी बाणी बैखरी मुंह नाल बोल के जेड़ा जाप हुंदा मदमा कंठ विच हुंदा पसंती फिर हिरदे च परा बाणी नाभी च इस प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट
0: तो नारायण देव जेड़ा है ए परा बाणी दा है मालक ते जेड़ा नर है ए पसियंती दा इष्ट भाव जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहंदे ने तो इस तरीके नाल कहंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा ए नर आप है नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन
1: स्वास ठहरावै नाभ कर उठे तरंगी तोज
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाभ दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर कि उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूंह नाल वाहेगुरु वाहेगुरु करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती यह दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਮ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੜੁੱਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਪੋ।

0: दोहेरा चलन समय संग रहण में दान देन ओलेन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे अथवा कई

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा बई जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है। जाप साहब की बाणी फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकते ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

सदगुरु मेरी रात गवाच गई, महाराज 12 घंटे की देर गवाच गए, 1 घंटे च 1000 सुवास गवाच गया। आखो सतनाम श्री बोलो ना, 1 घंटे च सारे बोलो 1 घंटे विच महाराज मेरे 12000 सुवास गवाच गए। सुवास तां इक नी मिलना जदों कितें एहदे विचों लड़ी टुट जानी है ना। गुरसिखो प्यारे हो, भावे अरबां खरबां की दौलत किसी के अगे रख दो, एक सुवास नहीं मिलना। मगर ओ गुआचे रात दे, पहली गल तेरी रात गुआची, फिर आखे रात ते सौ के गुआती, फिर चिप्स गवाया, फिर तू तरह तरह के सवेरे नाश्ते किते, बाणी नहीं पड़ी। मैं थोड़ा जा आप जी रहत मर्यादा ना जोड़ा लख सीधा करके बैठो। आखो सतनाम श्री धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद बैठे हो गल के आखो सतनाम, अपनी औलाद के भले जी आखो वाहिगुरु। साहब कहते गुरसिख रहत सुनो हे मीत, पता लगा की कहते गुरसिख रहत सुनो हे मीत बने। मेरे मित्रो गुरसिखो सुनो, रब ने मेनू रहत किया, पर बाते उठ कर हित चीत, चित जोड़ के घर विच रब विच जोड़ के प्रभात उठ के कर इशनान पढ़े जप जाप। गुरु गोबिंद सिंह जी मुकदस कलम, कर इशनान पढ़े जप जाप, जप जाप जप जी ते जाप साहब अमृत में इशनान करके गुरु का सिख पढ़े। आखो सतनाम श्री। फिर अगला जीवन दस दे कहते वाहे गुरु नित बचन उचारे, सिख दी रहत वाहे गुरु नित, वाहे गुरु को हिरदे तारे, वाहे गुरु को अभी जो बचन कह गए कहते ने वाहे गुरु बिन कह जो खाना है, जे रब का नाम नहीं जपया अमृत उठ के नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, सारा दिन लगा दिता ते रब का नाम नहीं ने जपया। तो सतनाम श्री। एक साथी दा आखो वाहिगुरु बोलो वाहिगुरु। किसी घर पछताता छन गया, जिन्हां दे नाल मैं गया मैं उन्हां नूं बड़े धार्मिक बंदे समझदा सां, उन्हें प्रशादा पका के मेरे अगे रख दिता, उन्हें साधु अगे रख दिता, मैं उदो बच्चा सा। कहिंदा जदों थाली दे विच प्रशादा बनिया तो उन्होंने एक बार भी आख्या वाहिगुरु। ऐसे गुरबाणी का फैसला है कि खाना खान तो पहले, जे अज तक नहीं करते तो कल तो रोटी खान तो पहलो रोटी देने वाले भी याद कर लो। शुक्रे ना हो, शुक्र विच डुबो, ये शुक्रे की निशानी है। कपड़ा पाया, टाई बत्ती, शीशे अगे खलोता, तैयार होके चले गया। वो कहिंदा जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडा में जेदी कृपा नाले रेशमी कपड़े ते रोटी खान गए, प्रसादा तोड़ के फुरकी ते कोई वाहिगुरु नहीं आख्या, जो मुंह लाउण लगे ते उस रोटी विचो रोण की आवाज आई, वो साधु कहिंदा जो रोटी रोई इना मेरे नाल ने आख्या क्यों ये आवाज रोण की क्यों आई, तो कहते अंदरों आवाज आई रोई मैं नाम आ किसे शुकरे के मुंह विच पैन लगी। शुकरे गाजी के बोलो भाई किसे उसे लिखे ना, पापी सिउ तन गड़िया, पढ़ते हो सारी बात, पापी सिउ तन थुका पिया, रोटी रोई पापी के अंदर चले चलिया, इतो नहीं लंघूंगी कंध बन के बाहर निकल जूंगी, लोग मेरे थुकन गए कुछ उस इंसान जरा देने वाले भी भुला है अंदर चली गलत घर के अंदर चली। जदो रोटी रोई ते साधु कहता है उन्होंने डर के पांच बार आख्या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जदो पांच बार डर के वाहिगुरु निकलिया ते उन्हें आख्या वाहिगुरु तेरा शुक्र है, रोटी खिड़खड़ा के हसी। सारे पूछा पहले रोई क्यों, हम हसी क्यों है,
ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭਜਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤਵੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਗੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਵੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਹਰ ਬੀਜਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਖਟੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਨੌਟੀ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ।

याद रखे करो प्रभु सिमरन गर्भ ना बस है प्रभु सिमरन दूध जामा गुरु तो झूठे पीने गुरु को झूठे ना कहो एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तान गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलाज रेजी नलाज की कहते वैशाखन वेरलो के डर मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आन के क्या रेजी नलाज लाज तो है नहीं ये नलाज वैशाखन जीव तो भी शर्म नहीं होती आखिर की गलती होगी इधर गुरु दास सिख को कब्र के मत्थे टेकन ले हर ताज करत हर ताज करमन छट के इनू छट के पत कानून ते जाई होरना वल तुरिया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहता नहीं तू कहते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हें कोल की लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुरा ते मरिया कोल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि मैं जीवते को मुए को मरे को मरिया मिलता है जीवते को जीवदा मिलता है तुरदे को तुरदा मिलता है उड़दे को उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे वो तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागा कवीतर चक्कर के ना पे गुरुद्वारे आया कर गुरु द्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए इतने गुरु द्वारे आया कर वे कहते किसी में कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई गुरबाणी के बच्चे लिखा है हर बिन कछु न लागनी बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय ढीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो गए एक बार आपको सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनूं रचना नूं खातम होके क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही रास्ते नूं गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ये रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आखो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना आपां करदे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत ते कराउंदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पाणी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई समझदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਹੋਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ

सतगुरु किंदे कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो इहदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु गालिका बोलो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडां उहनूं टिंडां कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता

0: अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत
1: सिंचो
0: के परो क्या है बोलो ना अमृत सिंचो परो क्या रे क्या रे क्या रे जेड़े खेती बाड़ी करते हो उन्हें पता है एक छोटे छोटी बच्चा पा के खेत दे बेचे की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुम पता पिंड रहने वाले खेती बाड़ी करने वाले पता क्या रे पा दी दे साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आज विश्वासा की पिंडा की वाला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे पर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर के केड़े प्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम अर्ग के खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे केड़े कहते अखा नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पे आखो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पेगा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पेंदा है फिर आखिर महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर दिंदी गल करन लगता वा फिर कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस श्वासा की माला अपना मगर यह जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा की माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੋ ਮਾਲੀ ਕੇ ਉਹ ਤੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੋ

आप सज्जना कदी आवाज मारियो, आवाज जरूर मारियो, आउंदा रहियो, आउंदा रहे, आवाज जिन्हें मारी उन्होंने घर आउंदा रहियो। धन गुरु ग्रंथ साहब की गोद बैठा कह रहे थोड़ा चौकीदार आउंदा रहे, आवाज मारियो। फिर एक बार रिपीट करावो, आउंदा रहे, आवाज मारियो। मारो अंदर आत्मा तो आवाज, आप सज्जना हाँ देखा घर अपनड़े खड़ी तका, घर अपनड़े खड़ी तका।

0: जी बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी आ

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नूं मेल लो।

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेडे मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजा दी पूजा विच नहीं लाया, आख्या नहीं वो परमेश्वर जिहदी पूजा करनी आ वो राजान राजा, बोलो राजान राजां दा भी राजा है, किसे राजे दी पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जेडे होए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे दी पूजा नहीं करनी, राजां दे राजे दी पूजा करनी। राजान राज गरीब नवाज पातशाह, लोकी दिन चढ़दा है गड़वियां लिख के पानी दियां, जग लिख के पानी दियां, सूरज नूं मत्था टेकदे ने, सूरज दी पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं, सूरज दी पूजा नहीं करनी, जेदी सूरज पूजा करनी है वह भानान भान आ, वह सूरजां दा भी सूरज है, ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने, चंद्रमा की पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं, चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं, चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा, नमो चंद्र चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए, कहण लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहण लगे किनू पूजिए, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव्या, देवत्या का भी ओ देवता है, ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीआं पूजां विचों ला के मड़िआं दीआं कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिआ मरिआं दीआं कबरां ते मत्था ना टेक, आ मैं तैनूं दसां जागत जोत जपे निस बासर, बुझियां जोतां दे उत्ते ना मत्था टेक, जागदी जोत नूं मत्था टेक, शब्द सदा जपदी जोत आ, जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नूं इक वार फिर आखो

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

बोले तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने मैं मूर्ख किश दीजे प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वचन नु समझो। कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुरु पूरा सुख दाता, मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी। सारे आखो कादा सुखां दा दाता है, सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाईए। इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु आ सुखां दा दाता है। ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवज्जो देवनी चाहना है। कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल, केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है पवित्र करदा है। गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसीं इह वचन पढ़दे हो भूले मार्ग जिन्ने बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुर चरण बिहारे। ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, आ जे बंधन काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया, कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन, ऐसा फस गया ऐसा फस गया। कहिंदा इत्तो ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा, मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है छड्डिया ही नहीं जा सकदा, कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं, कोई कहिंदा लोभ मेरे कोलों छड्डिया ही नहीं जांदा। ऐसा लीन हो गया इहदी गुलामी विच फस गया। ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा। ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हे हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिक दारा पंचे मांगे हाला। सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ते पंजे ही मेरे कोलों आण के मामला मंगदे ने। आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हे महाराज इना दुखी करदे ने, इतना दुखी करदे ने, मैं किसे दी जमीन भी नहीं बोई, ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने। हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी। हरी दे लोगो सतसंगियो मेनू एक एक नित नित हर दिहाड़े मन रूपी पटवारी इना पंजां दी फौज लेके आण के सब कुछ लुट के लै जांदा है, ते महाराज मेरी कितो पेश नहीं जांदी। ते हुण वास्ता पाया सो उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया। पहली गल ते जिनू ए सुध आ जाए, जिनू ए चेता आ जाए के गुरु के प्यारे हो मैं लुटिया जा रहा, मैं इस गल दा पता भी किन्नू लगा। आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एक थां ते तीसरे बापू ने वचन कीता एकाग्रता बख्शियो इस देही अंदर पंच चोर वसे। बोलो इस देही अंदर केड़े केड़े जी, काम क्रोध लोभ मोह अंकारा, ए पंच चोर वसदे ने इस देही विच। मगर पता किन्नू घर दे विच ते कोई चोर आ जाए ते ओदी रबट लिखाउण जाने आ जी मेरे घर चोरी हो गई चोर आ गया। हालांकि की चीज चुकी, टीवी चुक लिया $500 दा हो $1000 दा हो ओदी रिपोर्ट ते करवाने आ। मगर जिस घर विच 24 घंटे पांच चोर लगे ने, कदी एदी रिपोर्ट लिखाउण गए हो? कदी आख्या जे जाके हर के लोगा मौको नीत दसे पटवारी? कदी रोए हो गुरु दे अगे? कोई बच्ची दसे, कोई भरा दसे, कोई गुरमुख प्यारा दसे? जितना गुरु नानक पातशाह दी बाणी ने आख्या उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया। मैं बाहवां खड़ लिया उच्चिया, बाहवां उदों खड़िया करी दिया जदो हार जाइए। आखो सतनाम श्री, चेता करियो जदो जंग हुंदी आ दोवां पासिआं तों ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਵੱਡ
ਦੁੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ